सोहन पंच प्रवान नदरी गर्म सोलन कच्छ खाई उठ पाए नानक गया कर्म कांड का एवो ज्ञान कांड का कित्ते पौन पानी वह मंत्र कित्ते

निर्विकार पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गल व्या कमाए संख पापी पाप असंख मूर आ गए असंख मलेच मल भाए असंख

गावन तुदनौ जति सति संतोखी, गावन तुदनौ वीर करारे, गावन तुदनौ पंडित पढ़ नरखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनौ मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग मछ पै आले, गावन तुदनौ रतन उपाय तेरे, अड़सठ

कीमत पाई, ज्ञानी प्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तुद बिन सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाही ठाकर हाईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक।

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल

शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद पर

तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया सब निदान। दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह

तू सब नीत्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कभी बाज बेनती चौपाई, हमरे करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दय मुहे बचाव हो, सुखी बसै मोरु परवारा, सेवक सिख

प्रयासा तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हु जो सदा हमारे पच्छा श्री आस तुझ जू करे हो रच्छा राख ले।

हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिव

भाव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं भूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम भाव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भाव आब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे पे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला।

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोई नाही उथै तेरी रख अग्नि उधर माही सुनकै जमके दूत नाए तेरै चढ़ जाहि पाओ जल बिकम सगाहु गुर सबदी पार पाहि जिन कौ लगी प्यास अमृत से काहि कल मह एहो पुन

गुर नाऊ, सतगुरु सेती रतिया दरगह पाई ठाऊ, कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे, जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले के ई के महला पंजवां।

इतनी सेवा प्रवान करनी जी पूरा चुका किमा आओ नतिस्कार योग भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी खालसा तिना पासों पावन पवित्र चल रही लड़ीवार कथा शरण करिए जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु।

वाहे गुरु साहिब जी। एक ओंकार सत गुर प्रसाद अगम अपार अनंत गुर अवगत अलख अपीव पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सत गुर नानक देव सतगुर नानक देव देव देवी सब ते आवे नाद बाद बिस्माद राग रागुण गुण गावे सुन समाद अगाद साध संगत सपरंपर अवगत अलख अपेव अगमिति अपरंपर अक्षर आद अनिल अनाहद सत सदैव तुही करतारा जीव चिते जालमै थालमै सबके पेट को सत पोखनहारा वेद पुराण कुरान दोहो मिल भांत अनेक विचार विचारा और जहान निदान कश में ऐ सुबहान तू ही सिरदारा हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी

अवनासी पुरख पाया परमेश्वर पौ शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वडा हे। जन नानक नाम उधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला। औद घटै दिन सरहणा रे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एव संसार विकार संसे मैं तरय ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावै एहो रस। अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो। हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे।

0: कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले। बीस बिस्वे गुरु का मन मन सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुरु को बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं काश परम। सहस सियाण पलै न जाइए नानक ऐसा गुर बड भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करण आघने मन संतोख आत्म पति आने पूरा गुर आख्याओ जाक मंत्र अमृत दृष्ट पेखै होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जिहे बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निरबानी। निराहार निरवैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मै राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे नानक भारम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठाड वरताई आनंद भया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियो ही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा ना ही कोय सर बिन निरंतर एक को सोए। पोत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगास साध कै संग राच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार। अष्टपदी संत जना मेल करहो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल रिद मैं उरतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वर्थ। एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कोंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत। जिस सोभा को करै भली करनी सा सोभा भज हर की सरणी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवपद लाए। सर्व निधान में हर नाम निधान
1: नानक दरगह परवान मंत्र बोधो हर कै नाए भय दिस्तावता बैठाए। ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय से हर सोए। अलता तीर्थांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूरन होए आस भगत पाया तम परगास। तित कर जाए बस अबनासी कहु नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार। अनको पावना छूटन हारे सिमरत सासत बेद बीचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संगना चालस तेरे तना तू क्या लपता वह मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इंते कहो हो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्थार इंते कहो हो कवन छुटकारस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुन गाओ गुन गावत तेरे उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ सियानत सगली मना साध संग पावे सचतना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दर गै जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सा लाहे एक सिमर एको मन माहे एकस के गुण गाओ अनंत मंतन आप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूरन पूर रहो प्रभ आप अनक विस्तार एक ते पए एक राध पराचत गए मंतन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभाया परया तव सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी।

गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एको टेको आधार नानक मागे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साधु कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास दिन निवलाग बड़पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल।

सो क्यों बिसरै जगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काडै, जन्म जन्म का टूटा गाडै। गुरपुरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, महान त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपो अवरह नाम जपावहो।

तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग को किसे व्यापत। जब अपने आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होत परम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत।

सोई किव करया था किव शालाई क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे इक दू इक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुआ नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सोहै पाताला पाता लख आगासा आगास कोड़ कोड़ कपाल तके वेद कैनिक वात सहस अठारह कहनक तिब्बा सलोहिक धात लिखा हुए त लिखिए लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुद न जानिए समुद सह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनहु न विसरह अंत न सिफती कह नयंत अंत न करने दे नयंत अंत न वेखण सुन नंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण कीते बिरलाही ताकि अंत न पाए जाहि हु अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब ऊंचा ताऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ एवड़ ऊंचा हुए कुए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगे जो दपार कितिया गणत नहीं विचार किते कप टुटे वेकार किते लै लै मुकर पाए किते मूर्ख खाही काहे कितिया दूप भूख सदमार एपे दात तेरी दातार बंद कलासी भाने हुए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओ जाने जितिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखै से पे के जिसनु बख्शे शिवसा लाह नानक पातशाही पातशाहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाए अमुल पाए अमुल ला सुमाए अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो मुला क्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखै वेद पाठ पुराण आखै पढ़े करह वख्यान आखै बरमे आखै इंद आखै गोपी तै गोविंद आखै ईसर आखै सिद्ध आखै केते कीते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुन जन शिव किते आखै आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे ते किते होर करे ताक न सकै के ईते जीवड़ भाव

आखण जोर चुपै न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती ताप रखी धर्मसार, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निसान, कच पकाई उतै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म कंड का इहो धर्म, ज्ञान कंड का आखो करम, किते पवन पाणी वै संतर, किते कान महेश, किते बरमे घाटत घड़ी है रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दान मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया काणी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत अनंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाटत घड़िए बहुत अनूप, ताकिया गल्लां कथिया ना जाहि, जी को कह पिछे पछताए, तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन महराम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना उहे मरहे न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोक, करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नजर निहार, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तंत नंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीर सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खलागन तपताऊ, भांडा पाओ अमृत तटाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाई

मुखवा पातशाही दसवीं छपै चंत प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत के अचल मूरतन भव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रा साहि साहान गनी जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन।

अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंद हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं।

भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व काले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्ये नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सासांग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं परनाशी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता दो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछिदी अभिधी अनामंग कामं समस्तो पराजी समस्तस्तुतामं तेरा जोरचाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्टंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अकीजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत कर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौन पुरख पारु सर्वान् त्रिमान् देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपनकार जत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जौन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राख जतर तत्र दिशा विशा

आत्मात्म जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जा पीजे जा पा देवनाद मूर्त ताप्यो सबै जीता परम रूपनीत मूर्त पूर्ण पुरखपा सर्विश्वरचो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत अभूत लख अपेश अंगरागना रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक आप रूप अमीक अनुष्ट देख पुरखूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मत पार छंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नांगन पौ प्रकाश निश्चिनाना साजन बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन भूतांग अपंग अतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजं प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर चक्र दान्या चाचरी चंद न सत्रै न मित्रै न परमंग न पित्रै न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै प्रतिशय अदिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंतव प्रसाद कथते किया छिज देशय किया भिज पेशय किया गंज कर्मै किया भंज भरमै किया भिज लोकै किया दित सुकै के अवतूत बरनै के बेभूत करनै कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि बर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आध अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह कि पाक बेअब है कि गै भुल गैब है कि अफुल गुना है कि साह अनुसाह है के कारण पुनिंद है कि रोजी देहिंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र भौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्या कि सर्वत्र थाप्या कि सर्वत्र पान्य कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र इंद्रय कि सर्वत्र चंद्रय कि सर्वंग कलिमय कि परमंग फहिमय कि आकिल अलामय कि साहिब कलामय कि हुसनल वजू है तमाम लरजू है हमेशल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल शिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजुअल निदानय हरिफुल अजीम रजा की यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूप है अनाद स्वरूप है
अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाद्ये अगंजे अगाते शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अचूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है।

ताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जानहि जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जान।

भक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलिख हैं, अपिक हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंत प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल चंत्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, परमात्मं परमाते, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विभूते, अनंगी अनमे, त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंग त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र, न सत्र न मित्र, न तात न मात, न जात न पात, निरसाकं शरीक मितो अमीक, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती चंत्व प्रसाद, इसाहर जहूर है, कि हाजर हजूर है, हमेश्वर सलाम है, समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुसनुल चिराग है, कि कामल करीम है, कि राजक रहीम है, कि रोजी देहंद है, कि राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है, कि हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, कि नरकं परनास है, बहस्तुल निवास है, कि सर्वल गवन है, हमेशुल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अधीश है, आदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेक है, जमीनुल जुमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जरूरत जमाल है, कि चलंग प्रकाश है, कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि मितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपंग है, मद पार चंत्वा प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुणगन मोदाम, अरबर अगंज, हर नर परपंज, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, वर नर अमंड, वन पवनास, मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम, जल तल मुदाम, अंचे जि अंग, वासन अपांग, उपमा पार, गतमित उदार, जल तल अमंड, दिशविश अपांड, जल तल महंत, दिशविश बेअंत, वन पवनास, त्रितर तुरास, आजान बाहु, इक्कै सुदाहु, ओंकाराद कथनी अनाद, खलखंड के आल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अंश जगातु, अजिज न बातु, अंचंज गातु, अनरंज बातु, अंटट भंडार, अंडट अपार, आडीठ धर्म, अतटीठ कर्म, अनबरन अनंत, दाता महंत, हर बोल बना चंतव प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, कलकंडन है, महमंडन है, जगतीश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्ववारण है, त्रित के तरने, जग के करने, मनमान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्पर है, सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है, ब्रह्मंडस है, कलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, थपा थप है, कृता कृत है, मृता मृत है, मृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी त्रित है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, मृता मृत है, अजबा कृत है, मृता मृत है, निर्नायक है, खलकायक है, विश्वम्पर है, कुरुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पावभंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार लंके, नमो वास आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, कचरी चंद,
अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास का स्वगंज पंज अलख अपख अकाल दयाल लेख अपेख अनाम काम अगाह अठा अनाथि प्रमाथि अजुनि अमुनि नराग नरंगे नरूपे नरे के अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद तत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते विजाय विगनी मे हरियंग करियंग करिमुल रही मे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं बेपूते।

चौपाई। हमरी करू हाथ दैर छा, पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मुहे बचाव। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आसंगरिय। पूरन होए हमारी आसा, तूर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बार चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री आसु तो जुजू करे हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन पजायो। आद अंतिक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ विचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताका कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कच भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिर सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा। अंडज जे रज सेत जकीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप सोयम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रच्छा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मैं हरिहु। रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट चाचव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहु उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री आस तुझ जप है दयाला,
पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बांचत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहि सुर सना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन्नर के रह ओ जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस बनी जय अर्ध सहस तीन कही जय पाद्र सुधी अष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए

अतिक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपीत कहे हम एक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न केहु सब तो हे बखान्यो।

वाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर।

दुख दारू सुख रोग पया जा सुख काम न होए। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहो। जात में जो जोत

रहीमा अल्लाह तो गणी हाजरा हजूर दर पेश तू मणि दरियाओ तू दहिंद तू बिसियार तू तनी देह लेह एक तू जिगर को नहीं तू दाना तू पीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बख संध तू हरी हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी सरनागत

कुकनेरे कोई न जाने तुमरा अंत जाप गवंत सगल सामग्री तुमरे सूतर तुमते।

बिन शब्द रोग न जाई रहाओ। सिमृत शास्त्र पढ़े मुन के ते, बिन शब्द सो

ना उहमरै न जाया। पैरो महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझ है रोग गवावह। गुर

सतगुरु सेवा लाई। जो इच्छा है सोई फल पावै, गुरबाणी सुख पाए। पहरू महला तीजा, दुख विच जम्मै दुख मरै, दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै, बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग

मन मुख आसा नहीं उतरै, दूजे भाई खुआई, उधर नै साण न भरिय कबहू, तृष्णा अगन पचाई।

नानक सतगुर सोझी पाई सच नाम निस्तारा भैरो महला तीजा। काल मह प्रेत जिने राम न पछाता सतयुग परम हंस बिचारी द्वापर त्रेतै मानस वरत है

सब इच्छ पुजावन हार रहाउ, सब मैं इको रव रहया, गुरबिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभु, अन दिन हर गुण गाए।

चूका मन अभिमान आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड्याई नान

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चटड़े बिगाड़े दुष्ट सभा महमंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार हर तेरा कहा तुझले उबार खिन मह पयान रूप निकसया थंब उपाड़ हर नाखस नखी

रहाउ। गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ियै शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर

मस्तक भाग हुआ जिस लिखिया सो गुरमत हिरदय हर नाम समार मधुसूदन जपिया उरतार देही नगर तस्कर।

बसै। खिन खिन तिन कौ हौ बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी। रहाऊ

सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन पीना, तिन हम श्री वह नित चरणे, जग जीवन हर त्याए तरणे, अनेक असंक नाम हर तेरे, ना जाही जिहवा इत गणने, रहाउ गुर सिख हर बोल।

गुर पीर मिल खुद खसम पहचाना, पैरो महला पंजवा। दस मिर्गी सहजे बंदयानी, पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी। संत संगले चढ़ो शिकार, मृग पकड़े बिन

प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन राव रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वे

साच पदार्थ गुर मुख लहो, हर का भाणा सत कर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पीवहो, हर हर हर हर, हर

अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमर है, मनमुख अंध अज्ञाना। हर की भगत करे तिन निंद है, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा। अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा। ओम जग जप तप

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी शैवम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत बल वह संत पापी पाप असंत मूर्ख संत मलेच मल पाए असंत

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

0: पे जाने ए साला की सला है इतनी सुन नदियां पे बाहर पासों में जान समुद्र सा सरता गिरी कुल नौनी
1: अंत में सुखी कहना अंत में करना देना अंत में देखना सुन।

कर्ता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वटक माए अशांत पापी प्राप्त अशांत मूर यार अशांत मलेच मार पाए अशांत

निस्तप निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे सुधाए अशांत मलेर माल पाए अशांत निंदक करे पास नानक नींद कह मारे न जाना जो तुम पावे सही परिकार।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

0: भाई परिकार
1: अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख काल वाए अशंख पापी पाप अशंख मूर आर करे अशंख मलेच मार पाए अशंख

आकाश विश्व विश्व तरसी थावती कर्म कर्मी कर्मी होए विचार सोहन पंच प्रवान नगरी कर्म सोवे कच्छ आई उत्तर।

आपे अंडे जे रसे तज उत्पज ने आपे खंडे आपे सब लोए आपे सूत आपे वो मणियां कर सकती जगत पर होए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे टटेरी होए मेरे मन में हर वे अवर ना कोए सतगुरु च नाम निधाना प्यारा कर दिया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जा थल सब था प्यारा प्रभु आपे करे सो होए सबना रिजक समाहे दा प्यारा दूजा अवर ना कोए आपे खेल खिलाए दा प्यारा आपे करस होए आपे ही आप निर्मला प्यारे आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाए दा प्यारा आपे करे सो होए आपे अर्ख न लखिए प्यारा आप लिखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा तिसवे जेवड़ अवर ना कोए सब कटे आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरख सब लोए नानक गुप्त बरतदा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोरठ महला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे थाप थापे आपे वेख बिकसदा प्यारा कर चोज विखे प्रभे आपे आपे वणतन सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रसत रापे अमृत नाम मारस मीठा गुरसबदी चता के रहाओ आपे तीर्थ तुलड़ा प्यारा आप तरे प्रभ आपे आपे जाल बताए दया प्यारा सब जग मछली हरे आपे आपे भुल ना भुल ही प्यारा अवर ना दूजा जापे आपे सिंजी नाद है प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तपताप है आपे सतगुरु आप है चेला उपदेश करे प्रभु आप है आपे नौ जपाए दा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रसे आप है आपे आप सलाहिंदा प्यारा जन नानक खरस्त्र आपे सोरठ महला चौथा आपे कंडा तोलत राजी प्रभु आपे तोलत लाया आपे सहो आपे बणजारा आपे बणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम नदाना प्यारा पर पूरे मीठा लाया रहो आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म बरतदा प्यारा जल माटी बंध रखाया आपे ही भाव पाए दा प्यारा बन बकरी सी हड़ाया आपे काश्ट आप हर प्यारा बिच काश्ट अगन रखाया आपे ही आप वरतदा प्यारा पै अगन ना सके जलाया आपे मार जीवाएदा प्यारा सह लेंदे सब लवाया आपे तान दीवान है प्यारा आपे कारे लाया जो आप चलाए तो चलिए प्यारे जो हर पर मेरे पाया आपे जनती जनता प्यारे जन नानक वजे बजाया सोरठ महला चौथा आपे सिस्ट पाएंदा प्यारा कर चहान सूरज चंद चनान आपन ताने तान है प्यारा आपन माने अमान आप दया कर रखदा प्यारे आपे सुकट सजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत्संगत मिल हर ध्याए तू हर हर बहुनाया बन जान रहो आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बख्श कराएंदा प्यारा आपे सच निशान आके वरतदा प्यारा आपे ही फरमान आपे भगत भंडार है प्यारा आपे देवे दान आपे वड़ा आप है प्यारा आपे ही प्रधान आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे तुल परवान आपे तुल तुलाएंदा प्यारा जे नानक सद करवान सोरठ महला चौथा आपे सेवा लाएंदा प्यारा आपे भगत उमाह आपे गुड़ गवाएंदा प्यारा आपे शब्द समाह आपे लिखण आप लिखारी आपे लिख लिखा मेरे मन जप राम नाम ओ माह अंदर आनंद होवे बड़भागी लै गुर पूरे हरलाह रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बिन आपे गऊ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश बजाहा कुबलियां पीड़ा आप मराएंदा प्यारा कर बालक रूप पजाहा आप अखाड़ा पाएंदा प्यारा कर वेखे आप चुजाहा कर बालक रूप पाएंदा प्यारा चंडूर कंस केस माराहा आपे ही बल आप है प्यारा बल भन्ने मूर्ख मुगदा सब आपे जगत पाएंदा प्यारा बस आपे जगत हथा गल जेबड़ी आपे पाएंदा प्यारे जो प्रभ खिंचे ते उजाह जो गर्भे सो पसी प्यारे जप नानक भगत माहा सोरठ महला चौथा दो तुके अनक जन बिछड़े तुम पाया मनमुख कर्म करे अहंकारी साधु परसती प्रभ पाया गोविंद शरण तुम्हारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत्संग पए साधु जन हृदय मिले संत मरारी रहाओ तू

है सोहन पंच परवान सदरी कर्म सोवे कच्छ खाई उठ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का कित्ते पौन पानी वह संतर कित्ते

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे सजाए संत मलेच मल पाप खाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कहे मारे न जावा जो सुख पावे सही परिपाक।

आकाशवाणी ब्रह्मा अक्षवांतरम कमल सुमेला भगत कमल कमल श्रेष्ठ कमला कमल श्रेष्ठी मां वेद पैया।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सोचे सोच न हो गई

संत भाव संत क्रिया संत संकल्प संत योग मन संत भगत ज्ञान विचार संत सती का संत सूर मोह मत्ता।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत मूर्ख आल करे अशांत मलेच माल पाए अशांत

आकाश विश्वित धरती थाप थी धर्म था कर्मी कर्मी वे विचार सोहन पंच प्रवान नदरी गर्व सवे कच्छ आई उत पाए नानक गया धर्म खंड का एवं।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख गल वाय शंख पापी पाप अशंख मूर यार करे सुख मलेर मल पाख है अशंख निंद

सत्पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।